कहते हैं जय जय देखा तय तय पूर्ण उनसे निकली पूर्ण मच्छी पानी को बिछड़ी नहीं ते जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म विच रहिंदा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिस वेले मनमत विच आ जाता है तेरे का ही आन होता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दम पंछी की जाने आकाश के दा वड्डा पाई सज्जा सिख की जाने गुरु के दा वड्डा है मेहमान जाने दे ब्रह्म जंती वड्डे ओ वड्डा पाठ तेरा पाई सज्जा चला जा गुरु को ये विचार बनाया है तैं कि चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दीता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो नौ महीने ढक दिता है ते जे तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु अठारह महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जाना चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पड़ते आया की वेख्या जिथे कखा की चुली सी उसे आली शान मकान बनिया बिर बिर पिया तक जिन्हें सुदामे ने टकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवे सुदीपर की कोल पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन सुदीपर जी की घरवाली ने किया बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवे सुर पे समीपन विखी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामिया गल सुन कौन लै थोड़े जे छोले हैं चने हैं पोटली बन दिते किसी डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया चले गए लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर पर चुकन लगे निरंकार की रेत बारी दादी मारी रात पे भगवान कृष्ण ने किया सुनामी हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामी ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन्हें उसे शहर चल गए रात इसलिए बिताऊंगे हम दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण को भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण को तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम की तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने चिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उत्ते बैठे भगवान कृष्ण ने किया सुदामिया कुछ खाना पे सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ भी बेहतर भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी कहने लगे
लगे हुए सुनामियां कुछ खा रहे हैं। महाराज तुम किधर पता है इतने पता तू मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते ऐसे गरीबा ना विरास न कर भगवान जी विद्युत कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत किसी ने सुना देने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कह लगे सुनामियां भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज तुम कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो सुनामी ने क्या महाराज तुम्हें बड़े खोले तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखा च लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है ते तुम कि कमरे तो उस वेले भगवान कृष्ण ने बचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जमीन जाओ दलिद्री तो पवित्र प्रयोग किया है क्योंकि वन के खाना बंदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी खो के खाना गंदगी खो के भी खाता है

करते हैं ठीक है, पर मित्र को मुझे शर्म ध्यान होती है, शर्म का भी और तार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई सुधार जी लिख रहे हैं मित्र सुदामा दाल जी, मित्र के मित्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल जी बाल सिखाए मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाई पिछली लाजड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया। स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्रिया दिन है और भी बड़ा पर्व लागू हुए बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन भी नहाए। ये ठीक है बचपन इकट्ठे खेलते रहे हैं खाते पीते रहे हैं वो राजा बन गया, मैं तो गरीब आदमी किस तरह भी कोई मुलाकात होगी किस तरह भी कोई पहुंचे पैसा जी लिखते चलता जिंदा दिखिया कीकड़ जाएंगे कौन मिलाए होता नगर द्वार का से सिंह द्वार खुलता है। फिर कई दिन बाद सिंह धर्मांध भी थे जिसलिए द्वार का पहुंचे भगवान कृष्ण ने मैं ना कहा अंदर जाने लगा दरबार में रुक क्या मैं किधर जाना है जी मैं भगवान को मिल चल पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता है पीछे हट कोई गल नहीं मैंने अगे ही पता थी गरीबा को हाँ हम देता है ऐसे कारवाड़ी ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुना मारो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे। भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुनामी ने किया बड़ी दूर आया था आज तार के मित्र को मिलवा कहना मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शत्रुता धर्म है इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र सुदामा रो के कहने लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीच ला के सकिया मत्थे से तिलक लगा होया ब्राह्मण जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर खड़ोगे फिर दरबार अंदर पहुंच गया अगे भगवान कृष्ण जी बड़े सुंदर सिंहासन से बैठे रुक्मणी से राधिका जी चरण चल पी दरबार में जाके नमस्कार की थी मथा टेके के महाराज एक नवा तमाशा वेखे है भगवान जी लिखे है दरबार वो केड़ा तमाशा दरबार ने किया महाराज अज एक नवे नमूने का आदमी थोड़े दरबार आए दर से ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਖਰੋਤੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਖੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਉਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

की जिंदगी है। सुदामे का नाम सुनिया ही भगवान ने अपने तखत को चार मारी। तो यहां आ गए तो कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुदामा, मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी पचे हैं। पहुंचे जिथे सुदामा खड़ा है जाके कीता दूरों देख अयोध्या जी ने दूरों देख दंडौत कर दंडौता कर दंडौत जान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत होते सारा श्री लम्मा पर परोस कर दिए दंडौत बंधन अनुभव अखबार कितने कितने उसे प्रेम यानी सारा श्री जो गुरु हो गया के दंडौत कर सारा सही पूजा करके दोनों हाथ जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं।

पूर्ण संपूर्ण हैं, व्यापक हैं, ओमनी पोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्व जगह व्यापक भी हैं ते सर्व शक्तिमान भी हैं, सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है, अंत सजदे विच आंदे ने, शीस झुकांदे ने, अदब नाल चुके आंदे ने, मैं किस किस का नाम लवां, किस किस खिता जमीन का नाम लवां, ते उत्थे वसन वाले वासियां दे नाम लवां, हे परम शक्तिवान, हे प्रताप शील सतगुरु अकाल पुरख पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते अतापी नाथ, तैनू कोई जंतरा मंत्रा नाल भी पा नहीं सकदा, तू इना तो भी बाला त्री है, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते अतापी नाथ, अतापी तो मुरादे ताप साधन वाले, तप साधन वाले, तूणिया ताउन वाले, सब तेरी वड़ियाई करदे ने, पर कीर्त तिहारी को न पार पाइत है, तेरी उपमा तेरी वड़ियाई करद्या करद्या भी कर नहीं पाते, मैं भी तेन चुकदा हां। दूसरे प्रमाण विच आखदे ने चाहो दर्शांदे ने अपने परमेश्वर दे यस कहण दा, आप जी फरमांदे ने जे कदी सारी खुशकी रब्बा मस्कून ए सारी अर्थ जो है एक कागजात का रूप धारण कर लवे, कागजा के पलंदियां बदल जावे, होर की लैना है गैबी आवा, ते आखन लगे जितना सृष्टि उत्ते पानी है, दरिया नहरां कसियां जौहर तालाब सागर समुद्रां दा जितना पानी है, हे परमेश्वर ए स्याही दा रूप अख्तियार कर जावे, तू वड्डा दाता है ते वड्डियां गुणां दा मालिक है, दुनिया ते जितने कागजात अज तक बने ने पेपर मिलां कोलों ए थोड़े ने तेरे गुण लिखण लई, फिर आवाज ने कहा की चाहना है, ते गुरु साहब जी कहंदे ने सारी धरती कागज बन जावे, सारा सृष्टि दा पानी मस बन जाए, इंक बन जाए, स्याही विच बदल जाए, तेरे गुण लिखण वास्ते तैयारी है, होर की लेना है, ते होर हजूर कहंदे ने जितनी नबातात है, वनस्पति है, बोटनी है, सारी ही कलमा दी शक्ल विच बदल जावे, कागद दीप कागद, कई जगह जाल की जगह दद्दा लगा है, तो खैर मतलब इसका कागज तो ही है, बोली दी रूपरेखा भी बदलती रहती है, जिमें बाबे नानक दे वेले गोश नू गोश कहा है, पर मतलब इसका कन्न तो ही है, यक अर्ज गुफ्तम उदो जजे पैर नुकता नहीं सी हुंदा, जजा ही हुंदा सी, बोली का स्वरूप हुण बदलिया है, अर्ज नू जे अर्ज किया जावे ते कोई भुल नहीं होया करदी, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो उदो पेश लफ सी, हुण सबसे दे पैर च नुकता भाषा वालिया ने वधाया है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करता, इत लफ्ज गोस होवेगा, गोस कोई फारसी का लफ्ज नहीं है, क्योंकि सियाने पुरशां ने सिख मिशनरी कॉलेज दे दानिया ने गुरु नानक यूनिवर्सिटी वालिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी वालिया ने जदों इस तरह के लेख कढ़े ने तो उन्होंने यह गाइडेंस देने का यत्न किया है, मुमकिन है किसी नूं फिट आवे जां ना आवे, पर साहतकार यह गल मनदे ने कि उदों बोली की रूपरेखा होर सी, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करता, इस तरह आंदा है बिचड़, तो गुरु साहब जी कागज नूं कागद वरतदे ने, आदि गुरु ग्रंथ साहिब विच वी कई जगह वरत्या है, नानक कागद लखमणा श्री राग शब्द दी चौथी कड़ी दी इक तो, नानक कागद लखमणा मतलब है गुरु नानक देव जी कहंदे ने कि लखामन कागजात होवन, नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै पाए, मसू तोटना आवे मसू मीन स्याही, लेखन पाउन चलाए लेखन मैंने कलम, हवा दी तेजी नाल कलम चले, इथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी ऐसा ही फरमाते ने कि कागद दीप सभे करके, दीप मैंने बर्रे आजम जितने एक खंड ब्रह्मांड ने, कागद दीप सभे करके और सात समुन्द्र न की मस कहे हो, गुरु साहब जी की कविता का जो खुलासा है, उभार है, यह हर जगह

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते

सरायचा बड़ा वड़ा शामियाना है, तंबू है केड़ा। ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है, पर उस गोपाल राय दा तंबू केड़ा है? ये सारा संसार चार दिशा

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राक्षा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पारिस परमेश्वर दे तंबू विच इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

लक्ष्मी कुमारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुमारी है। ओदे हुक्म तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

महादेव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नामदेव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़ियां दा समां दिता, पर सत घड़ियां बीत गई हैं। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते हैं।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया आखिया ए नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नु उस वक्त

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबा च वंड दिता। आप तुर पे बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो सेज कह लो बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पे नाल बादशाह दे दरबारी तुर पे। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे नहीं,

जा, तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा है नामदेव नू जदू पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे नहीं

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां नूं आंदी किरत विचों, ताओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलता है। ए सारियां सेजा तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर ओ गोपाल ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मांड बनाए ने,

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणमय नाम देओ तांची आन सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है ओ बनान वाला है। प्रणमय नाम देओ तांची आन नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे भी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

प्यास लगी पानी दी पाल कीती एक खूह नजर आया उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन क्योंकि पानी बहुत नीवा सी खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल पानी देखिया बहुत डूंगा है बहुत नीवा है पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे पानी पीता पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए चेलिया नू प्याया कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है तू भी भगत है तेरे विच भी शक्ति है तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू मैं पानी ता पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे नहीं ता मैं पानी नहीं पीना क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे कोल बैठ गए हाथ विच खड़ताला।

धरती बरसात नाल प्यार करती, बरसात पवे ता धरती खिल उठदी। कुसम फुल नू की है बास खुशबू, जिस तरह फुल दे नाल पवर।

तरनी के औरतनु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी ऐसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

की लोड़ है, अधी रात करो उठे, गंगा घाट जा पहुंचे, जड़िया पौड़िया तो स्वामी रामानंद उतरिया करते सन, कबीर साहब मुंह सिर लवेट के उन्हां पौड़िया ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताईं स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करन वास्ते

स्वामी जी आए अमृत वेले, बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दिया पौड़िया उतरन लगे, देखे आ पौड़िया दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ठोकर लाण दा ऐसा असर होया जिस तरह लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज आन

ऐसा शुरू हो गया। स्वामी रामानंद पैर लगा के एक कहण दा के उठ राम के राम को पाई। गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा है। ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओह एक दूसरे दे मनां दीआं जाणदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दिओ। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल।

परमेश्वर नु रोटी खवाई, तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे, लै भाई तन्ने आ, रोटी तां असीं खा ली,

0: रत्नवा बारू भीत बनाई राजपत रत्न ही दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहा गवा
1: अजनु समझ लच बिगड़िया ना हनी अजहू समझ

मन मूर्ख अज हूं नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पा।

अब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए है, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहिब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लख भी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत अन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन अन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगली है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिदी, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,